0: अन्ना अन्ना जगता छेरा शला निगा लेथप क चकु इंज गया चकु छमो जगरे जितना ताची मासी ना नि मथुनी खचिक स्टापो न्याम सुंदा दक खरु न्याम क्रियेनी लीरा जमा जन तंदोगी योनी तमो जगि इंज खनिगे जेंत छमसंग नंगनी अरंग दोकु ग जेनर सुंगी दायो जगिया अरे दारकवता खजलान दिसा छमरा छरगिन दिसा अरगुई नोगे जेमसन छसगिन दि टोको छों छों समागाखि मशीना शिफ्ट न्योंजा पोटार जिमग छतंग शली डोंग सेनी जोरी डोंग युवाज सेको मुन जगाता सोशु जेवी जम्मु अरंथंग जेंथा तंग जावी गलायस गा चियो चिया गलाये तेता सी मर्गिन दंग छिनी करा मर्ग छिशुवाती नारा गलाये तके छिनी तमोजगी यंज अरे टारा नेमाजगा हस्तम मालगा जम्मू के गलायन दंग छिंगु तो उवर सोंज गया जम्मू के यंग ते सेमदगीरी निंगर खानंगा सीमा सोंगा हरगोमु अंजिल माखगा तगी सेमख्रे कोनो गुनाउनु गे छरा शलानि गे खिनुजगनी खनिगरा सेमदगी येशोरा छरगिन गे सेचो
1: ओ ओ तोमाडु तोमाडु दो छमा सो अनिगा देनय अनिगा जिन तो सीजु ना नामयंग गुनवा कोरी दलीता अदुकु गलाय रशुं मातम नरिया
0: तजिस शलागरा शमदंगस गे जाबतंगी या ता छक छक ता निगरा सेमदगी इंदिरको सुंगे दुकु गलाय चाना छागगो तजिनो छरगिनरा थापा सुंगे खनिगा सुंगे दुकु गलाय चाजु सेमथ चेतंगसिया तनी वली जोंता छरा शला निगी निंसग गग जास ज्याच करंगाता सुगज छामजिला सुंगे खसर चाली जा जागंगा माता जमु गलायत सातना योनु गस्किमा जिगछिन आयगछिन जाब्रा से गुनु तिसकी तंगे अरंग अरगाम जकना जगे बियोनु कोसोंस येनारा जाब्रा गे छिम तता सिग स्टैम्बुई ने करा ने मार्गोता अरगुंग श्यारा नंगा प्रिंजु मतमनी तमोस कामोस दाइन तंस छेरा शला निगारा थम मेसुंगी निंगिना जाब्रा गोर गोंडमनी यारंजु मारंजु इरी दंगर जावी दाचिया नेमा जगाता कजाब्रा छंग जंग शवर जगनीता जगजगा छे चेजगता जाखिसकनंगा खाजी मंगा मंगा जगलगी तखरियंगोनो शलाग रगतंस तनीता शला छुंतंग चेक जगता जोंगी यार जगें छे न्योंगो ngar da ko ga lai a zavra ga ki tangi chema jri jri ok ta chu rang gi tham na chu the na ha lai ta chra chir yong thav si ta mai ti ni chu kham ba kang yi sin jwa go ta zi she no ta zi gi chak gri ta chi gi ala cham sung kan lg zor ngan tar si si si si
2: ཁྱི
0: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
1: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
0: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ता रे माशिर कोरी जई फोटंग ना लग जुइस खर्निगा शरण जोगुनो लावर जगनी ता छु छेंबु हस्तंग सामनी आ बालब दकुता रंगा सेजा चकोनी तमुगा राफ खासगा थुनतांस སྐབ དེ ད ཤལ གི ཆུ ཆེན པོ དེ རི གི ད ཡིན ན སྟང ནི ཆ ལི ང སྐལ ཟུ ཁོར ཤོ ར ཆུ ཆེན པོ དེ ཨ་ནི ག ཆི གི ཆི གི རི དབ ཟིནུ ཙམ ནོ ནུ གི ཆར གིན ག
1: ཆུ མར ཆུ ར ང ཐབ ཡུ ཁོ ཡོ ཡ
0: ད ཟིരി ཨ་ལ་ཡ ཤལ ཁ ནང ཨ ཟུང ཤལ ཆར གིན ག ཡ་ཝ ཁ་རི ད ཆེ ག ཏག སི ཁལ་ནི་གཱ ཆུ་ཆེན་བུ་དི ཤེ ཐོང་གོ་ཅི་ད་ ཆན་ནང་ན་ཨོ་ནུ་གི ཉ་མོ་ཚང་མ་དུ་ཁུ ཡ་ར་ཅ་ མ་ར་ཅ་ཡི ཡ་ར་ཆུང་ མ་ར་ཆུང་ཡེ་ཀོ་ནུ ཤ་ལ་གཱ་རེ་གི ད་ ཏོ་གི་མ་བ ཟ་ན་དུ་ཏེ་ནི་ ཁ་ཆ་ཟུ་ཚ་ར་ར་ བཞར་གི་ཡོ་ཚ ཤ་ལ་གི སེམ་གཱ་ཡང་ཡི ཁ་ནང་གི ཁ་ཅི་ ཚ་གི་ཡ་ཁ་ཅིང་གུ་ཏོང་ནུ་ཅི་གི་ནི ཨོ་ ཏམ་མ་ལ་གཱ ཁར་གི ཁ་ནང་ན་ཡོ་ནུ་གི་གལ་ཡ ཆན་ནང་ཨ་ བུ་ཟི་ཐོང་ཡི་ བསོང་ཟི་ཡ ta shila dhaku xiex songi o ta hui zhig tang nari ya alaya chana alungi ta ta xie shura chirginga shki tami nga shura ta chaga harka watang si ta kanyiga chaga harka watang no zhigini tu sang tong no stara hanyig zu hujeri ka zu lagi ta chana nga hdi da zhig chirginga
1: o namgi ma ta tabzig yo na mara
0: ཏི ཟིར ཏི ལི ཏི ཆི ཁབ དེ ཏི ཧི བི ཟི གི ཆེ ཆེ ཟི གི ཏི རང གི ཚི གི ཚང མ ཁེ ལི ཆི ཁ ཉི མ ཤོ གི ཡོང གོ ནུ ཁེ རྒི གི ཏི ཁ ཆི གི རི
1: གི ཨོ ང ཐབ ཟི གི ཡུ ཁ ཟི གི ཡོ ཏང ཏ
0: ཏི ཟི ཟི ར ཆུང ཏི ཆི གི ཧི བི ཏི ཚོ ཨ སུང ཧི བི ཏི ཟོང ཏང
1: ཨོ ང ཉི གི ལ ཡོ ཆུ ནུ ང ལུང ཏ ཡ ཆུ ཨོ མ སུང ཨ ཚོ ཁ ཏི མན ཅི ngi chu chuk chung ma sa ji yin
0: ta zi xian no ha ri bi de ku xi ge song yi
1: o to xi ye men go ta xi ye men nga ha ri ma jo a la yi za yong ya
0: ta zi ri shi ko ri chen nga la yi za ge wo song si zhe ge zeng guo nu ji ni ha ri bi ke ga la yi nie teng yi shi ko ri qi ge na fa teng zi ya tani ta chera shila nyegi lalung munga gai shkawa munga shali ta shir kori jayi pochang jargu ka khchi thoni chikti no ta khniga yongju chesungi jau pochang jargu ngazgni jap tangi ta khniga nangan zu mathabs tani ta chergin ge shila shecho
1: aro chu zug chungomo